क्या गुण या कब खाना। जो सेवा है तुद जी जा नानक तिन कुरबाना। हर त्यावै है तुद जी से जन जुग मह सुख वासी से मुक्त भय जिन हर त्याया जितिन टूटी जम की फासी। जिन निरभाओ त्याया जी तिनका पहो सब गवासी। जिन सेवे आ जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप संबासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत तेरी

காணம் தாக் तेरी अनक तेरी अनक करह पूजा जी तब तपह जपह बेंता तेरे अनेक पढ़ह मो सिमरत सास जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरखे अपरंपर करता जी तुद जीवड़े अवरण कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुदे आपे भावै सोई वरता जी तू आपे करहै सो होई तुदे आप

चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहसपन जाए अर्ध सहस फुन तीन कही जाए भाद्रव सुदी अष्टमी रवारा तीरुस्तद्रव ग्रंथ सुधारा।

विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब साधारो जे को खावे जे को पहुंचाए तिसका होए उधारो।

दीपालोआ मंडला खंडवर पंडा अंड जेर उत्पुजा खानी सेत जा सुमित जाने नानका सरम मेरा जनता नानक जनते उपाय।

मूरख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा बाबा मंगा मोख द्वार जति सदावा जुगत न जाना छठ बह कर बार सब को पूरा आपे हुए घट न कोई आखे।

0: संसार में केवल इतना ही वाणी पड़ी जा रही है।
1: मेरा इतिहास शास्त्र तीन रोटियां बनने तीन तीन रोटियां जो दो चुकियां कर्म वाली ने थाली रखियां टकियां ते अपने मालक दे अगे रख दितियां। मालक तू कल दा भुखा सारा दिन पंडा ढोंदा रहे तेरिया हड्डियां चूर हो गई ने
0: बहादुर जी ने आख्या कहा मगर अपनी करे जान कोई बने धर्म यज्ञ का बलिदान कोई अगर वीर ऐसा हो इंसान कोई तो हो धर्म रक्षा का अमकान कोई अगर कोई

मंत्र न दूसरो धर उपत परलो एक निमखत घर आन नाही संसार उजियारो निर्मर कोट प्राचत जाए नाम लिए हर हर जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जी ही ध्याप खन हांके बल बल बल बल सद बलिहार वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का फतेह हर को ना

गुरु की परम सत्कार योग साजी नवाजी, गुरु का रूप स्वरूप साध संगति, गुरु के खास रूप खालसा साहेब जी, जो जो गुरुमुख माई भाई सिख सेवक वृद्ध बालक सदगुरु गुरु नानक नाम लेवा, गुरबाणी दे प्रेमी गुर शब्द दे आशिक सतगुरु दे चरणा दे भावरे, जो जो गुरु के दरबार विच हाजिर होए हो वो सारे दे सारे मनुख जन्म दे भले वास्ते श्वासां नूं सफलाउण लई मन दी एकाग्रता हित और जीव आत्मा दी कल्याण निमित एक बार प्यार नाल आखरू सतनाम।

समुंदर है, घूमण केरिया ने छला पहनिया ने, उस समुंदर दिया लहरां च किते काबू आ गया। नेड़े स्टीमर कोई नहीं, दुल्हा कोई नहीं, बेड़ी कोई नहीं, बेड़ा कोई नहीं, निराशा है। मैं गया गोते खांदा जान के बनी हुई है। चार चफेरे निराशा दे बदल छाए हुए ने, आस की किरण कितों चमकारा ही नहीं मार दी। एहो जी पीड़ा विच, एहो जी दुश्वारी विच, एहो जी मुश्किल विच, एहो जे आड़े, एहो जे करड़े समय बाई चांस जे कोई लागे बेड़ी आ जाए ना, ते वो उस डुबदे मरदे बर्बाद हुंदे दे जीवन दा सहारा। ओ दे वास्ते जिंदगी है, बूंद तुको जाए से बेड़ी मिलत, बूझत दीपक मिलत तिलत। माउन लग ही पैंदी है ना, मेरा बापू कहंदा जब लग तेल दीवे मुख बाती तब सूझ सब कोई। जिन्ना चिर दीवा मौजूद है, तेल नाल भरिया होया, बत्ती पई हुई है, अग लाई हुई है, रोशनी है, घर सारा वसदा नजर आउंदा, चहल पहल नजर आउंदी है, पर तेल जल तेल मुक जाए बाती ठहरानी। भावे दो उंगल मोटी बत्ती होवे उत्थे खलो जांदी है, सुन्ना मंदिर होए सारा कमरा जरा 14,000 रुपया ला के बनाया कमरा, 1,000 वो सुनिया जहा हो गया, उजाड़ जहा हो गया, अपनिया टकरा कंधा नाल वजन लग गया, लभदा कुछ नहीं। तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदिर होई। ये काया दीवा है, श्वास दे विच तेल ने, जुबान दी बत्ती है। जिन्ना चिर श्वासां दा तेल है, जुबान दी बत्ती रोशनी कर दी है। जिदन श्वासां दा तेल मुक गया, कायां दा दीवा श्वासां दे तेल तो खाली हो गया, उस वेले जुबान दी बत्ती ने खलो जाना, सुना मंदिर होई। मंदिर तेन सुनिया जा, कायां तेन सुनी जी जापनी है। तिचर वसे सुहेलड़ी, जिचर साथी नाल, जां साथी उठी चलिया तां तन खाकू डाल। जदों विचों ये निकल गया, ये काया जड़ी है, ये मिट्टी नाल मिट्टी हो जाना। मैं एक बुजुर्ग मुसलमान नु पढ़िया, कहंदा हजरत इंसान का कितना तकबर तेज है, इस मनुख का अहंकार कितना उच्चा जाके चमकन दिया है। हजरत इंसान का कितना तकबर तेज है, खाक का पुतला बना फिर खाक से परहेज है। जेड़ी मिट्टी का पुतला बनिया सी, उस मिट्टी को भी बड़ी नफरत करता, जुत्ती ते मिट्टी पई नहीं है, रेशम के रुमाल नाल गूंजदा, कोट ते मिट्टी पई नहीं, बुरश लिया 14 दालियां का पिछे दी करो, कालर ठीक करो। इनू ये गल भूली गई है, एक दिन ऐसा होना तू इस मिट्टी नाल मिट्टी हो जाना। जेड़े दाने लोग ने ना बुजुर्ग कदे उन्हां लागे बहिए ते सुआद आ जांदे ने, उह कहिंदे ने अदम की तरफ सब रवान देखते, चला चल का शोरों फगां देखते हैं। चलो ओए तुरो ओए, बिस्तरे बनो, रौला दे पिया ही होया। जहां देखते हैं, जिधर देखते हैं, लहंगे वल वेखो, चढ़दे वल वेखो, गुआंढियां वल वेखो, किसे महल्ले वल ध्यान मार। जिधर देखते हैं, जहां देखते हैं, चला चल का शोरों फगां देखते हैं। कोई सुबह जाता, कोई शाम को, दोपहर किसी का चला देखते हैं। जो आया यहां पर वो रहने न पाया, सभी कूच करते मियां देखते हैं। हयाबाद दुनिया का आलम ये कैसा, न रहती जहां जिस्म जान देखते हैं। जो रखते थे लाखों खजाने निहा में, चले हाथ खाली अयां देखते हैं। तैयारी करो तुम भी है बुलबुले, दिल गई है बहार, अब खजान देखते हैं। पद चढ़े आ गई, चले गए जोबन, चली गई जवानी, चले गए लहरे, चले गए हुलारे, आ गया बुढ़ापा, न तुरे जाए न वेख्या जाए। तू जरा अपनी जिंदगी वल वेख, ना टूटे ओदे नालों जिस मौला दी जात ने तैनू साजिया सवारे। केवल गुरु ग्रंथ साहब दे विचों दी लंघ जाना, एदे नाल नहीं कुछ बनना। मैं जदों पढ़दा सा डेरे विच,
ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਰਾਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਹਰੀ, ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾ, ਬਈ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਰਾਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਵਣ ਮੂਲ ਤੇ,

रख पर ए निर्गुण गुण कछु न बूझे। अरदास की है बख्श ले हो तो नानक सी जाए। बाबा जी कहते ने तू बख्श लें ते पावे दा पार उतारा हो जाए। ये ने बड़ा गुस्ताख है, बड़ा गाफिल है, बड़ा गुमराह है, समझता नहीं तेरे गुणा नु। ओ जड़ा गुणा दा मालिक है, मां दे गर्भ तो लैके दरबार आली तक रक्षा करने वाला, उस नु सिमर, उस नु अराद संगत विच बाके, एकांत विच नहीं, जंगल विच नहीं, पूरा कुट के नहीं, दिखावे दा संत बन के नहीं। भाई साहब भाई गुरुदास कहने ने गुर सिख जोगी जाग दे माया अंदर करन उदासी, कन्नी मुंदरा मंत्र गुर ते संता धूड़, साध संगत दे चरणा दी धूड़ विभूत सुलासी, श्रेष्ठ विभूति है साध संगत दे चरणा दी धूड़। गोया दी सुवा नहीं, कोलिया दी सुवा नहीं, साध संगत दे चरणा दी धूड़। ए बदन ते धूड़ी लावे गोया दी सुवा नंब, संतां धूड़ विभूत सुलासी, के साध संगत गुर गुफे बह। जेड़ी साध संगत है इनू जाने गुरु की गुफा, एदे विच बह जाए सहज समाध, सहज समाधि ला ले संगत विच बह के, अगाध निवासी जो अगाध प्रभु है ओदे विच वासा कर ले, ओदे नाल जुड़ जाए, ओनू चेते रखे जिन सहायता करनी है। आ अखर पढ़ लो, अगला प्रकरण पढ़ के तुहाडी सेवा च बेनती करन दा निमाणा यतन करांगा। ए बजन सारे गूंज पाओ, सचखंड दरबार दीआं इत्तां विचों भी आवाज निकलनी चाहीदी है।

में विद्यादाता क्या कर देती बेटा, एक है मौत एक है नाम, इन्हें दो चीजों में किसे एक नु याद रख लो तो दूजी चीज बदो बदी याद आ जाती। जेड़ा नाम सिमरदा उन्हें मौत हर वेले याद रही, जिन्हों मौत हर वेले याद है वो नाम जरूर सिमरदा, पर खौरा कदों प्राण निकल जाने। इन्हों दोवां दा आपस में ताल्लुक है, मौत नु एदा याद रख एदा याद रख, मैं बारक मैं जोग मैं बिरदी कछ बंद बंद, मैंने नेम कोई असूल, ये कोई असूल नहीं भाई, बच्चे की जान नहीं कढ़नी, जवान की अजे जान नहीं कढ़नी, बुढ़े की पहला कढ़ लेनी है, कोई असूल नहीं। गुरु महाराज ने एक जिमीदार का प्रमाण दिता है गुरु ग्रंथ साहब ने, भाई उन्हें खेती च बीज ले, जी करे कच्ची वढ़ ले, जी करे डबरी वढ़ ले, ते जी करे पका के वढ़ ले। एक जिमीदार अपनी फसल का मालिक है, इस तरह वो मालिक की जात निरंकार अपनी फसल का मालिक है, जिन्हों जी करे बचपन में सद ले, जिन्हू जी करे बुढ़ापे तक चांस दे दे, जिन्हू जी करे जवानी के सदल। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते हैं पर जोवन मर जाए के कीजे, जो जवानी च भरपूर हो गए पैंतियां वरिया का जे मर जाए उदो की करेंगा, इना ही है ना मेरा मेरा कर रो बीजे, मेरा मेरा करके रोवेंगा ताई मारेगा, ये तो गांह होर कोई चारा नहीं ना, रोक तो नहीं ना लेना तू। ओ बेरा न बुझिए आए पर जम खन, उस वेले का उस टाइम का उस किसे का उस पल का उस सैकेंड का किसी नहीं पता, जदों जमा का फंडा आ पैना, जदों जमा की जाली गल आ पैनी। और इस गल वास्ते साहब सच्चे पातशाह महाराज अनंत अनंत प्रमाण दिते ने, और अकट प्रमाण जिन्होंने कट नहीं सकते। मछली जाल न जाने सार खारा असगा, समुद्र का पानी पाने नमकीन ही है पर उल्टे बहनते हैं ना, मीलों के हिसाब न लम्मा। जुगराफिया वाले लोगों ने फैसला यह किया कि जिनी धरती पहाड़ों में जंगलों में फसल बीजन रुकी हुई है ना, ये नालों तीन गुणा वड्डा समुद्र, और फिर धरती नालों है भी उच्चा, तो वेखो उस प्रबंध करने वाले का प्रबंध, उच्चे थां का पानी नीवे थां वसदे लोगों नूं रोड़दा नहीं, धरती नालों वड्डा हुंदा होया किनारियां चो, धरती नालों वड्डा हुंदा, वो समझ ली मेरी भाषा ने मेरे वर्गा जी कहा। अपने किनारियों तो बाहर होके लोगों की जान लैन का कारण नहीं बनता, एडे अथाह समुद्र च मछली तरदी है दौड़ती है नसदी है, और तुम हैरान हो जाओगे मालिक दियां गल्लां पढ़ के, असी तो इन्हां गल्लां वल जांदे नहीं, असी रिसर्च नहीं करते। मैं एक ईरानी की रिसर्च पढ़ी, उन्हें स्योंक दे घरां वास्ते एड्डी वड्डी किताब लिख रही थी, कहिंदा स्योंक दा घर इहदे विच तुहानूं खस खस दे दाणे जिन्ना किते कूड़ा करकट नहीं मिले। चार किस्म दे जीव हन स्योंक दे, एक वो ने जिहड़े पानी लिआउंदे ने, स्योंक दे घर आम तौर ते खुश्क थां

जिस तरह अचिंता अचिंचेत बाई चांस आनन फानन हर मछी जाले आके हिरदा ना इस तरह फिर दे तुरद हसदे खेडते तिया पुत्रा पोतरिया दोते दोतरिया नाल प्यार करते पता नहीं मौत का जाल कदों आ पैना कदों इन्हें इतने चले जाना कदों रोना धोना पा जाना इस गल का कोई पता नहीं। जदों जिंदगी का विसा ही कोई नहीं जिंदगी का इतबार ही कोई नहीं पता नहीं खा आना कि नहीं आना तो फिर गाफिल क्यों है फिर गुमराह क्यों है फिर गुस्ताख क्यों है फिर अवेसरा क्यों है फिर तो उन्हों चेते कर जिदे वास्ते सब श्री गुरु ग्रंथ साहब शब्दावतार कलयुग का बोध दसा पातशाह का आत्मक जीवन जड़ा होका दे रहा है।

साथ संगत किए। मैं अनंत वाराएं विनय कर चुका हूं और हकीकत है वो, अफसाना नहीं, झूठ नहीं। छोटा जहां मेरा पिंड 80-85 घर ने सारे, उस पिंड की मेरी जिंदगी है जिसे सोसायटी कोई नहीं, जिसे कॉलेज स्कूल कोई नहीं। यहोजे पंडोरे च रह के मेरे वर्गा आदमी की जानता गुरमत दूंगाइया गुरमत की फिलासफी गुरमत दुलंदियों नू की जाने हो। ये जो तुसी गुरु रूप संगत तुहाडे चरणों का आसरा लैके बह जाए, जिवें सतगुरु रहमत करदा उवें बुला लैंदा। मैं इलम विद्या गुण कोई चीज कोल ना रखदा होया तुहाडा सारयां दा इस करके भी धन्नवादी हां कि जे तुसी मैनू ना बुलाउंदे ते इत्थे मेरा बच्चा रहिंदा। आत्मा सिंह अमोल ज्ञानी जिन्हों आंदे हो न्यू सिख टेंपल का ग्रंथी, चिर बाद मैं मिल पिया। मैं लख खटिया, मैं करोड़ खटिया, अपने बच्चे दे दर्शन कर लए। 15-16 दिन उहदे कोल मैनू रहिंदे नू होए ने, अजे मैं 22 दिन उहदे कोल होर रहना। कई आदमी शक विच पै जांदे ने, मनुख जो है इहदा मन कई कुछ हो जाए। पुत्र दो ने, एक नादी और एक बिंदी। बिंदी पुत्र उहनू कहिंदे ने जिहड़ा माता पिता दे संयोग नाल उत्पन्न हुंदा, ते नादी पुत्र उह है जिवें श्री गुरु नानक साहब दा नादी पुत्र सी लहना शब्द पुत्र। यह मेरा धार्मिक लड़का है, सतगुरां दी कृपा नाल बंगाल दे इलाके विच फिरदियां इस काके ने भावना प्रगट कीती, मेरा जी करदा मैं तुहानू पापा जी आख्या करा। मैं आख्या दो अगे आखदे ने तीजा तू ही आखदा, फिर वो पापा कासे ही नहीं चलिया। चूड़े के दो लड़ पे कि चूड़ा गुस्से चा कहता मैं तेरी भैन दे ब्याह दौड़िया फिरा। आंदा जिसे चार सौ बंदा होर दौड़िया फिरू, तू ही दौड़िया फिर वो धरती था कि चली दौड़िया फिर कोई रोकदा आखदा रहो भाई। ए पापा जी आखन लग पा, तो हूं इथों तक गल पहुंच गई है तो मेरे घर का कोई विआह शादी कम जिस वे प्रारंभ होना हो मेरे घरों इस बच्चे की मां वो पहलों बोलेगी तो पहलों वड्डे नूं पुछ लिया जे वड्डे नूं। जिहड़े मेरे नादी बिंदी पुत्र ने वो छोटे ने, यह मेरे घर च वड्डा है। इहदे पुछिया तो बिना असीं शादी नहीं करते, विआह नहीं करते, कोठा मछड़ा नहीं बनाते। पहला यदि सलाह होंगी है तो यह पूर्वला संयोग है, कोई पूर्वला जन्म। हूं मैं इतने आया दिन रात मेरे तो सड़के सड़के, हो सकता मेरे न मेरे घर जमिया पुत्र जरा कु गुस्से हो जाए तो पापा कौड़ा बड़ा बोल दिया तो मैंने चाह ही ना प्याले, पर यह तो गुस्से होंगे ही नहीं। मैं जरा इनू मिल पाया जो कोल रह पाया ना तुहाडा इन्ना ही परोपकार, उहदा ही नहीं मैं देण दे सकदा। होर जो कोई तुसी मेरे ते रहमत कर रहे हो उहदा ते पहला मैं देण देणा ही की होया। वाहिगुरू की रहमत होई, 13 वरिया बाद तुहाडे दर्शन होए। कल दा दिन फिर इत्थे, कल दा दिन इत्थे दरबार गुरु का सजना, ते जिहड़ियां रहिंदियां तुकां ने उहनां

अमृतार को नाम लेप मन सब सुख पाए, जे रसम चाखे तो जन तृप्त अघाए। जह ठाकुर से प्रसन्न भयो, सत्संगत तुर प्यार, हर गुरु नानक जन परसो, जन सब कियो उधार। हर गुरु नानक जन परसो, जन सब कियो उधार।

की परम सत्कार योग शादी नवाजी गुरु का सुंदर रूप स्वरूप साध संगत भी गुरु के खास रूप खालसा साहेब जो जो गुरुमुख प्यारे माई भाई वृद्ध बालक सिख सेवक साहबां दे पावन दरबार में हाजिर होए हो वो सारे दे सारे मनुख जन्म दे पले वास्ते

छात्र के चितवत वर्षित में शायद गुरु सके पाठशाह का अमृत वचन है कि जिस वेड़े पपिया चितवदा चेते करदा याद करदा शांति बूंद में चितारदा ते ओदे उत्ते तरस खा के फिर आसमान क्यों भी वर्त ते ए मीह पाया परमेश्वर पाया ए निरंकार दी आज्ञा हुई चारे कुंडा चौक बरसदा जदों दी रहमत हुंदी है चौं पासियां तो चौक के बदल बरसदा ते ऐसे बरसदे हुए बदल विच तुहाडे अगे कुछ गुरमुख प्यारे श्रद्धालुआं दा सतखंड दरबार विच पहुंच जाना ये सचमुच शलाघा योग है। जितने सज्जन माई पाई हाजिर होए हो वो कल वाली लड़ी में चेते करो गरीब नु आज शहर सका पातशाह कहने ने जैसे किरखे बर सिंह जैसे पालन शरण सिंह शेर भी शरण चले जाइए तो फिर

बाबे नानक निरंकारी बेदी वंश अवतंस सिया कुल दीपक तृप्ता दे दुलारे दी सिजी होई आवाज रंग विच रंगी होई आवाज अपने प्यारे प्रीतम दे नाम नाल छो के रसीली होई होई आवाज उन्हां हारे हुए पंडतां दे कन्नां तक पहुंच गई जिवें निकना तीस का खिचिया हुआ लोहा कोल आ जांदा ना हारे हुए पंडित कोल आ गए ते चार चुफेरे घेरा पा के बह गए जिवें चंद्रमा गिरदे परवार पै जांदा इदां पंडित बह गए चार चुफेरे सरकार बाणी पढ़दे रहे वो रस मानदे रहे प्रेम च मगन हो गए जिन्हां नूं प्रेम लग जांदा चंबड़ जांदा ये तो उन्हां दी अवस्था भी सानूं चंबड़दा नहीं राधे नूं प्रेम गया चंबड़ ते कृष्ण ने एक रुका जा लिख के भेजा भाई मैं हुण बन गया दुनियावी बादशाह मेरे को तुहाडे कोल नहीं आया जाना ते तुसी हुण जोगी बन जाओ जोगी जदों तुहाडा जोग परपक हो जाएगा ना उदों मेरे सूक्ष्म दर्शन तुहानू अंदरों हो जाणगे हुण सथूल दर्शन नहीं होणे ते प्रेम वाले दीआं गल्लां हुंदीआं ने अनोखियां दुर्गा मंगल प्रेमी सी ना ज्यों लगा प्रेम नाल गुण गाउण ज्यों लगा गुण गाउण ज्यों लगा गुण गाउण एक दिन कृष्ण उछक जो आगे खलो के तो बंसी बजाउण लग पिया ते बंसी लगी सोहनी दसम ग्रंथ मैं पढ़िया उहदे च लिखिया बाजत बसंत अर धर्म हिंडोल राग ललका के साथ होया बाजत धनासुरी मालवा कल्याण आर माल कौंस मारू राग बन में बजावा कान मंगल निवासुरी सुरी अर असुरी जो कन्नगी जो होती तहां धुन के सुनत पैना रही सुध जासुरी सुयो भाखे दासुरी सुरैसी बाजी बांसुरी मेरे जाने जा में सब राग को निवासुरी जेड़ी बंसरी च सारे राग वसदे ने ओह बजाई दिलवा मंगल ने पछाण लिया तो बजाउण वाला ओ हो गया उस बंसरी की आवाज की टेक लैके जाके सहजे नाल चरण परस के खलो के बांह फल लिया कृष्ण ने बड़ा चिर होया जी लभदा लभदा नहीं था हुण कितें जाएगा कुट के फल लिया कृष्ण सोलह कला संपूर्ण अवतार दसिया उन्हें ऐसी माया वरताई तो दिलवा मंगल दिया मुठा मीटिया दिया मीटिया रह गई तो बिचो अपनी बांह खसका ली औडी क दूर जाके फिर ला पाया बंसरी बजाउण ते बिलवा मंगल फिर अपने रंग में आ गया कह लगा।

चिंतन करो निरंकार का राधे ने नेत्रा च नेत्र पाए उद्धव दे कह लगी वे उद्धव जे मन ना भय दस बीस वे उद्धव जे मन ना भय दस बीस एक मन था गिरधारी ले गयो अब कौन भजे जगदीश मन तो एक कृष्ण लै गया हूं मन को 14 थोड़े ने साडे मन जड़े ने खौरा 14 ने खौरा 18 ने इन्होंने पता कुछ नहीं यह सभी सरवर भी पूज लेंगे ने लाल बेबिया भी पूज लेंगे ने अडनी शाइया भी पूज लेंगे ने तुलसी कोठे से होंगी ठाकर पूजे होंगे ने ब्याह उन्होंने भी कर देंगे साडा कोई निशाना ही नहीं साडा कोई सिदक ही नहीं साडा कोई भरोसा ही नहीं दोस्ता है तो सिदक वालों दलों ने प्रेम वालों दलों ने बड़े सियाने दाने प्रदाने जुरंतर विद्वान जाप दे महाराज इथे एक पंडित है जगजीत तुसी बहस मबहसा करो तुसा यकीनन जित जाना कदे साडियां पोथियां कपड़े मिल जाणगे असीं वी कदे बाल बच्चे नूं जा मिलांगे अजे गल्लां करदे सी जगजीत नूं पता लगा भई दो पंजाबी साध आए ने इक छोटा जिहा लई फिरदे ने तारां वाला उह लैके अपने 10-20 चेले आ गया ना जय सच का आनंद ना नमो नारायण ना को गल ना बात आंदा कहिंदा ओह साधो मेरे नाल शास्त्र अर्थ कर लो बिगड़े हुए आदमी नूं बोलना नहीं ना आंदा बोल ना जाने माया मद माता मरना चीत न आवे मैं तो अपनी जिंदगी तो तजर्बा किया 2.5 घंटे कथा की रंग लग गया संगत आहा हा हा कर उठिया जो बाहर ही निकले फुड़कुड़ियां टाउन टाउन कर दी ज्ञानी जी मेरा एक प्रश्न है तो तेरा बेड़ा तर जाए ना तू अगा वेखा ना तू पिछा वेखा तेरा प्रश्न होने ही पुंगड़िया तू मेरे डेरे नहीं जी आ सकता जे तू मेरे डेरे आना तौहीन समझना मैनू अपने को सदला हुक्म दे के तू मालिक अभी भिखारी होया है आना ही है तेरा हुक्म मन के पाल जा वो जाने तू ना दवानी की चाह पिया पर चज ना के प्रश्न करे उसे डांग मार दी मेरा प्रश्न है कोई सलीका कोई जुड़ती कोई तरीका कोई कायदा आखिर समाज में वर्तन का है सारू छिके उ टंग के असा अपना जीवन गुजारना कोई असा भी तो सीखना कि नहीं सीखना यह बेसलीका हंकार रतिया मतिया है गुरु ग्रंथ साहब दिया पाठिया एक एक बचन चोण मेरा बापू कहता विद्या विचारी पर उपकारी कि मैं विश्राम गलत दिता जान बुझ के मैनू मेरे उस्ताद ने ऐदा नहीं पढ़ाया पर असी आम तौर पर बहुते ऐदा ही पढ़ने विद्या विचारी ता परोपकारी जे विद्या विचार ले परोपकारी खाक बन जाए तो मैं तुम्हें 1400 विद्वान दसना कह भाई जी ब्याह उसे आओ कि कहना बहेंगा की विद्या जानता पर हमें दस बहेंगा की महाराज जी कविता तुम लिख दो मैनू लिखना मेरे मुंडे का विह सेहरा लिखना कहना बहेंगा कि परोपकारी सुहा होता विश्राम इतने नहीं मेरा बापू कहता विद्या विचारी तां विद्या का विचारवान तां समझो विद्या का विचारवान तद समझो विद्या का विचारवान तदों समझो जे विद्या पढ़ के परोपकार करता जे विद्या पढ़ के परोपकार नहीं किया ना विद्या विचारी नहीं मैं एक दिन प्रीतम सिंह नाल गली पै गया चार के दिन होए मैं आख्या इंद्रजीत सिंह वकील साहब जिहा मुंडा ये वकील तो इदा के नहीं होंगे वो तो एक गल से अड़ जाने टिकट के पैसे इधर रखो लिखाई इधर रखो गद्दी खर्चा इधर रखो आंदा इसकी गल ना पुछ जो कोई कोई जेब जो पा दे लै ही लेना चल वागुरु जी का मैं क्या मेरे वकील तो इदा घट ही कामयाब होंगे ने वकील ओडी दूरों पहले तार का मेरी जेब सजी च पैसे ने कोई खबी च तो जे खबी च ने ता जे सजी च ता है किन्ने उतों पता कर लगा फिर वकालत कितने कामयाब होंगी जिदे अंदर निरी पूरी रुपया की धुन है तो साध पौना है नहीं दवाई रब दी भावे कि पढ़िया मेरा बापू कहता माया कारण विद्या बेचो जन्म व्यर्थ आ जाए जिन माया वास्ते विद्या वेच दिखी है ओदा तो जन्म बर्बाद चले गया निकम्मा चले गया इनू थी विद्या का कमांड ने बाबे ना

की पर्वत वायु गुरु का सुंदर रूप रूप साध संगत गुरु गुरु के खास रूप खालसा साहेब जो प्यारे गुरु के पावन दरबार में हाजिर हुए हैं वो सारे जो सारे मनुख जन्म में चले आते हैं

बहुत उत्पूर्त करे जिन सदगुरु कैसे पार करे कार्योग जो कई बार हम बेनती कर चुका तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की महापवित्र वाणी में केवल नाम की चर्चा है ये होर कोई सिखा कहानी नहीं जो जो मनुख का नाम भी आया तो उसका भी वास्ता नाम ना हो या तो किसी एक हरमाक्षर जी का नाम आया जो नहीं जगे तो या किसी एक कैलाड़वर जी का नाम आया जो जगे कुछ भी हो गए प्रशंसा नाम दी तो नाम के खरीदार सारे नहीं होंगे जोड़े जोड़े सारा गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ नहीं सुन सकते वो जाने नामे महल में सलोकन लागे तो आए जाने

हर नाम हमारा वणिज हर नाम व्यापारा हर नामे की हमको सदगुरकार कुन्नी दई हर नामे का हम लेखा लिख गया सब जम की अगली कान गई हर का नाम गुरमुख किने विरले से आया जिनको धुर कर्म प्राप्त लिखत पई ये सब कुछ नाम ही नाम है ते सब माई पाई हाथ जोड़ो तरला लाओ गुरु रामदास महाराज के

बिन सदगुर कैसे पार परे। जे मैं ग्राउंड में फुटबाल सुट देगा ना भैया, जिरा जी करदा किका मार। सरकार ने मैदान च सुट दिता है भजन, एक दा नां लो जिहड़ा नाम सिमरन तो बिना तर गया होवे, किसे एक वल उंगल करो जिहड़ा सतगुरु की मेहरबानी तो बिना तर गया होवे। सतगुरु पूजना पएगा, ओदा दिता हुआ नाम अभ्यास करना पएगा, तां संसार समुंदर तो पार उतारा होवेगा। पाशाह भाई गुरदास गुरमत के बड़े सियाने सुचजे टीकाकार ने, वो कहते ने सतगुर पारस पर हर। मनमुख की हालत की है, सतगुरु सच्चा पारस है, जिदे नाल छू जाइए काया पलट जाती। उस सतगुरु रूपी पारस नूं ते मनमुख त्याग देंदा। सतगुर पारस पर हर ते पत्थर पारस ढूंढण जाए। एक पारस पत्थर है, ओनू लभण वास्ते चले जांदा मनमुख, पे किते पारस दी पत्थरी लभ जाए फिर सोना बनावांगे, सोने तो फिर चांदी खरीदांगे, चांदी दे फिर रुपये बनावांगे, उन्हां रुपयां दे नाल फिर फौजां रखांगे, कारखाने बनावांगे, गवांडी रियासत उते हमला कर देंगे, फिर राजे बन जांगे। एहो जिहियां स्कीमां मनमुख सोचदा, सतगुरु पारस नूं भुला देंदा, पत्थर पारस दे मगर पै जांदा। ते भाई जी ने बड़ा लम्मा चौड़ा नक्शा बधा, कहंदे ने सतगुर पारस पर हरे पत्थर पारस ढूंढण जाए। अष्ट धांत, एक धांत कर

लो मगर पाछे कछ न सूझे एह पद्म अलो। खतरियां ता धर्म छोड़िया मलेश पख आ गई श्रिष्ट सब एक वरण होई। धर्म की गत रही अष्ट साज साज पुराण सोदे करें वेद अभ्यास बिन नाम हर के मुक्त नाही कहे ना।

चार ही चरण ने। पहला चरण मैं कह दिता रहाओ वाले सुख तुसी हुण पढ़ रहे सो, ते दूजा चरण है बिन विद्या कहां को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित, बिन बूझे नहीं मन ठहरना। इस चरण का विचार पढ़ के करा, समा पूरा हो गया, समाप्ति कर दी। अज का मेरा पूजन सरदार नाल सिंह के घर से ना पंजाब चेते कराता रोटी खवाल, ते मैं कह गया सर बच्चे मैं गया गुरभजन सिंह अज टेप ला के आवे तू ते पुत्रा रोटी खवाली आई तेन अज कदा देना। वाहगुरु की कृपा होगी ये बाकी के जेडे शब्द के चरने कल के परसों दो दिन थोड़े सामने बयान करने ने, उसके बाद फिर प्रोग्राम बदल जाना। वो बदलिया हुआ प्रोग्राम इंद्रजीत सिंह साहब जी वकील या इन्होंने सहकारी सरदार प्रीतम सिंह साहब या होर इन्होंने मैंबरान इन्होंने निकटवर्ती सुनाओगे। मैं तो नौकरी सारी जिंदगी नहीं की, थोड़ा जा चल नौकरी की मिशनरी सुसायटी की, सरदार बहादुर महतार सिंह उदो प्रेजिडेंट सी सिख मिशनरी बोर्ड का, वो मैनू कह लगा मैं सरबोधे चो मैंबर खलोता मेरिया वोटा का प्रचार कर जाके। मैं क्या सरदार जी मैं तो वोटा का प्रचारक नहीं, मैं तो गुरसिखी का प्रचारक हाँ। कहना का तेन पता नहीं मैं प्रेजिडेंट हाँ मिशनरी बोर्ड का। मैं क्या सरदार जी तुम्हें पता नहीं मैं अस्तीफा लेके जेब च पाया। अरे अला मैं क्या हाँ पढ़ के लेके आवी। मैं अगले दिन अस्तीफा पेश करता उन्हें साइन पाते, मैं घर न चले गए। छे महीने की तनखा 125 रुपये के हिसाब न मैं अजय श्रोमणी कमेटी को लैनी है। बड़े बीत गए ने 1924 की गल, मैं नहीं मुड़के उन्होंने जाके जताया बे प्यारे मेरे नाल की कीता। फिर हुई मीटिंग बाबा केर सिंह पट्टी सरदार तेजा सिंह साहब समुंदरी सरदार पाल सिंह साहब वकील गुरदासपुरी इन्हों सारिया रल मिल के पूछया भी वह बंदा नहीं लगता किसे गया। सरदार कह लगे जी आह गल हो अस्तीफा देकर चले गया, मैं मंजूर कर रहा। कह लगे बेड़ा तर जाए अभी तो जाकर दुबारे उत्ते मिन्नत कर करके तरले कर करके लिया उसका फसया हुआ बंदा गवा दिता। फिर सरदार महताब सिंह ने मैनू चिट्ठी लिखी जी तेन स्पैशल ग्रेड में लै लें आ जा। जवाब च मैं दो बचन लिखे सन, उसके बाद गया नहीं दर्शन नहीं हो। पहला बचन यह लिखा जी पिछली जेब में लटकता पेन फाउंटन है पर उस जेडा अपना मुल भी नहीं, वो तो आप आजादी के नाल लिखता नौकर भाई जी ने इदा खुद भी नहीं। तो दूजा बचन मैं लिखा जी सरदार जी आउंदे जांदियां दी इह तां पट लावे ये है बाजार की छोकरी है, भावे 5000 भी मिले महीना फिर नौकरी अंत नौकरी बेटा लगता मान से। उन्हें मैंने जवाब नहीं दिता, मैं मुड़के जाके तनखाह नहीं मंगी, सारी जिंदगी नौकरी नहीं की। पर धन गुरु रामदास की ड्यूटी नौकरां दा पढ़ नौकर बन के दिती है। मीह वरदा होया तां भी आया, धुप लगी हुई है तां भी आया, समय सिर समाप्ति करके डेरे चले गया। नौकरां की तरह ड्यूटी दिती है, मैं तो एक अदना जिहा नौकर हाँ। दो दिन तुहाडी सेवा च इत्थे होर आवांगा, अगला प्रोग्राम की होना वो तुहानू प्रबंधक दस देणगे, उहदे ते तुसीं ते मैं रल के अमल कर लांगे। अज दीआं भुल्लां गलतियां साहिब सच्चे पातशाह श्री गुरु रामदास महाराज के दर दा कुकर जाण के माफ करनियां, साध संगत के दर दा भिखारी जाण के माफ करनियां, बचन सतगुरां दा जाण के अंदर वसाउणा ताकि मेरा तुहाडा समां लेखे विच पै जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।

खेल पाहिजियो। काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सके, ईस बम ज्ञान ध्यान धरत हिया चाहे जियो। सत साज श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे।

गुरु की परम सत्कार योग साजी निवाजी गुरु का रूप साध संगत गुरु के खास रूप खालसा साहेब जी जो जो गुरमुख प्यारे गुर सिख आशिक शब्द बन के साहबां दे पावन दरबार विच हाजिर होए हो ओ सारे दे सारे मनुख जन्म दे भले वास्ते एक वारा प्यार नाल आखो।

बाद कहां को बकता। गुरु की परम सत्कार योग साथ संग बाणी दे गूज भाव बाणी दियां उचियां उडारियां अते गुरबाणी दे अहम नुक्ते ये तो सतगुरु साहब सच्चा पातशाह ही जानते हैं। और या कोई गुरु के दरों करों वरोसाया हुआ भाई साहब भाई गुरदास वर्गा या बाबे बुढ़े वर्गा जानता है। सिख एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस नौशहरे सी ते श्रीमान सत्कार योग ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा अदर सिंह साहेब उसे पधारे हुए सन। भाई हीरा सिंह जी सरूके वाले कीर्तन करने वाले रागी सन और सजी मुची दे हीरे सन। हाँ हो गया करते हूं ठीक गया। श्रीमान सरदार सुंदर सिंह साहब मजीठा ने बड़े आदर ते बड़े सत्कार नाल संतां अगे मिन्नत कीती पे महाराज अज नाम दी व्याख्या करो ते मैं मिठा जिहा हस पै लबां च पर कोई जवाब ना दे ते भाई साहब भाई हीरा सिंह जी मेरे कथनी दे धनी नहीं करनी दे भी धनी सन। 2 बजे रात उठ के स्नान पान करके श्री सुखमनी का पाठ करके फिर आशा दीवार का कीर्तन करया करदे सन। 6-6, 7-7 को तो संगतां आ जांदियां ते उदों साइकिल भी नहीं सी हुंदा मोटरसाइकिल ते किते रहे आउंदियां संगतां तुर के सन। और जिस दिन दियां सानू इह सवारियां सवूरियां मिल गईयां असीं रह गए गुरुद्वारे की कंध नाल कंध हो फिर भी नहीं जाते सगो उल्टा भाई नूं गालां ही चार कढ़ने सवेरे ही लाउड स्पीकर ला दिंदा ना सौंदा ना सौण देंदा। इन्ना खुश हो गया जमाना इन्ने रुखे हो गए असीं अंदरों नहीं तो अकाली दहर के दिनों में कादियां के लागे पिंड एक बुटर जिला गुरदासपुर असीं तुरे जाइए तो एक बुढ़ी जी माई वो सानू वाजा मारे वे वीरो वे प्रसाद छक जाओ छा वेले का वेला हो गया वे असीं भी काल पुरख ही हुंदे आ इन्हां नूं पता वे आखना की आखना तो यह भी असीं भी अकाली हुंदे अगे असीं भी काल पुरख ही हुंदे आ प्रसाद छक जाओ असीं 7-8 सिख बदो बदी लै गई प्रसाद छका कैन तसली नाल फिर सानू जान दिता। एडा सीधा जमाना सी इन्ना प्रेम च गुजा होया सी और जिस दिन दे असीं कोई ABC पढ़ गए ना पता नहीं उन्हें की इंजेक्शन मारिया साडे अंदर प्रेम उड गया ते चिड़चिड़ेपन ने वो प्रेम वाली थां माले हुण नुक्ता चीनी ते भावे रब ते करवा लो वो जिहड़ी 7 बजन वाली गल सी ना महाराज ठीक आ वो उड गई। भाई साहब ने कीर्तन किया समाप्ति हुई तो संतां ने हुक्म लिया हुक्म लाके रुमाल पाके कहन लगे सुंदर सिंह जी तुसा हुक्म किया नाम की व्याख्या करो ते अखा चोन चोंदियां अखा नाल गल कही सुंदर सिंह भाग चंगे होण ते नाम सुनिया जा सकदा नाम की व्याख्या नहीं की जा सकती। 1430 पन्ना नाम की व्याख्या है तो सतगुरु अजे भी यह गल कहते हैं देखो करोड़ रुपए का वजन कह गए महापुरुष कह लगे सतगुरु अजे भी यह गल कहते हैं भाई तेरा किया जा तो नहीं। इंग्लिश वाले जो किताब खत्म करते हैं तो एंड लिख देते हैं उर्दू फारसी वाले तमाम शुद्ध लिखते हैं
ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। 1430 ਸੰਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1430 ਪੰਨਾ ਮੈਂ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਦ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਕੀ ਕੋਈ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ 1430 ਪੰਨਾ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣੇ ਆ ਰਹੇ ਕੋ ਗੁਣ ਇਹ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਿੱਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਏ ਮਾਲਕਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਰਹਿਮਤ ਆ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਬਰੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਬਰਸਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਈ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਈ ਹੋਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਇਆ ਆਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਵਰ ਪਿਆ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਜਣ ਸਤਿਗੁਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂਡਾ ਮਿੱਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋਵੇਂ ਠੰਡੇ ਹੋਏ, ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋਵੇਂ ਠੰਡੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪੇ ਹੀ ਆਓ ਜੀਅਰਾ ਬਿਲ ਲਾਏ, ਹਿਰਦਾ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ।

मैं एक लेख पढ़िया श्रीमान ज्ञानी दित सिंह जी का लिखा है भाई जिमीदार ने बीजी कपाह घा खबर डीला बहुता उग पिया कपाह की बूटी को विरली विरली जेड़े राई पांधी आन डीला घा खबर परू वेखण तरा ताजा है हवा नाल पत्ते हिलन खुश होकर चले जा ते जिमीदार ने की करना सी बरू घा खबर डीला जदों पैली वत आई लैके रंभी ज्यों लगा गोडी कर ज्यों लगा को विरली विरली कपाह की बूटी रहन दिती का खबर डिगड़ा पुट के मारिया वाण पाता ते जेड़े खेत नू हरिया भरिया वेख के गए थे जलो उदों की गल आए कह लगे मत मारी की बेवकूफी की किने हरे भरे खेत वे वाण पा दिता पर जिमीदार जानता सी ज्ञानी दित सिंह जी कहंदे ने पानी दिता खाद पाई सेवा करता रहा वाड़ की जदों आया महीना भादरों वसूदा तो जड़िया विरलिया विरलिया बूटियां सी ना तीन तीन गज लंबिया हो गई लगन फस गई आपोज विचों की लंघे न डट छड़पे कप कंगनी साडा जिमीदारा का मुहावरा एक पिंडा चो डट छड़पे कंगनी जिदा डडी छड़प्पा मार के इना क थां गां हो जाती है ना इनी विरली कंगनी बीजनी चाहिए ते डांगो डांग कपाह जिडी लम्मी डांग हुंदी है एडी एडी दूर कपाह का बूटा होना चाहिए ते खेस की बुकल मार के ज्वार विचों दी लंघ जा ज्वार इनी विरली होवे तो बेशक खेस की बुकल मार के लंघे तो टांडे दे नाल लगना इनी विरली होवे वो कपाह दी विरली पादों असू दे फीर आके तीन तीन गल लम्मिया लगना फल गई फुल पे टींडे बने कपाह खिड़ी आन पता लगे जमींदार नू भेजी को सारी पैली भी चिट्टी चादर विछाई हुई होंगी चूणिया चुके लियाईया कोठिया के कोठे भर गए ज्ञानी दित सिंह कहन लगे कढ़ दे विचों कहा कढ़ दे विचों खबर कढ़ दे विचों डीड़ा हो जा विरला विरला एक गुरमुख जिहड़ा ना सवा लख का मुकाबला करेगा विरला हो जा मैं हम पंजाब चो वेख्या प्रबंधक कौड़ा बड़िया छदते हैं वो रात को भंगड़ा भी पा लेंदिया ने दिन एक शब्द बाबे नानक का पढ़ के पैसे रात में भी लेंदी पैसे दिने भी लै लेंदिया ने मैं एक प्रेजिडेंट साहब न पूछा मैं गया ये जनानिया छद लेना बड़े बड़े विद्वान पे ने पंथ विच कहता ज्ञानी जी इन्हों के ना तो संगत बड़ी आउंदी है मैं आख्या जे तू 1400 हरण इकट्ठा कर लें एक शेर लंभ आकर मारे गर्ज ये लड़ देना लभन हरन किसे गए की करना नहीं पता कटे करके जिन्हों के अंदर सिखी की लेस नहीं लगन नहीं प्यार नहीं श्रद्धा नहीं वो जे आ भी गए 2000-4000 कट्ठे होके की इन्हें भी चढ़ावा तेन चढ़ जाएगा तो खोज हो जाएगा तो डांग उसे चलती है जेड़े गुरुद्वारे चढ़ावा जमा है कई गुरुद्वार के सिर से करजा उसे कोई नहीं आता मैनू प्रेजिडेंट बना लागे नहीं लगता कोई गुर ये मैं सिखिया पर गुरुद्वारे से कर्जा ही रहना चाहिए महीने के महीने फिर तो सुख रहा जलो टगे जमा हो जाए फिर काम खराब हो जाता अंदर लगन पैदा कर लगन वो लगन जेड़ी साहब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने तेरे अंदर चिन्ह की चुवाती लाई है तेरे अंदर अग सुलगाई है प्यार दी तेरे अंदर एक पलीता जहा ला दिता ते तेरे अंदर का प्यार कदे ठंडा पै ही ना ते एदां दा बन जा एदां दा बन जा ते कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हम जिस पे आप वे जाए जेड़ा मैनू मेरे प्रीतम नाल मिला दे मैं ओदे उत्तों अपने आप नू वेज दिया श्रीमान संत बाबा अतर सिंह साहब ढाई घंटे शब्द पढ़ते रहे ढाई घंटे आशा दी वार दे बाद ज्यों लगे प्रमाण देन ज्यों लगे प्रमाण देन दे दे दे के ढाइया घंटिया बाद फिर भी अखर एहो ही वरते सुंदर सिंह नाम सुनिया जा सकता नाम मनिया जा सकता नाम ते अमल कीता जा सकता है जे किसे नू प्याला मिल जाए पागां वाले नू ते नू पीता जा सकता नाम की व्याख्या नहीं हो सकती ये अकथ है

वो माए अपनी ही है, वो माए श्री गुरु ग्रंथ पढ़े सच सारा श्री नानक निरंकारी साहब सच्चे पातशाह का वचन है, सच भी एक सरा मैंने शराब है, सच सारा गुड़ बाहरा, पर शराब च गुड़ नहीं पैंदा, सच्चाई की जेड़ी शराब है एह्दे च गुड़ नहीं, सच सारा गुड़ बाहरा जिस विच अमृत नाम, एह्दे विच गुड़ दी थां नाम पैंदा, नाम का गुण पा के फिर सच की शराब तशीर की जाती है, सच सारा गुण पाया जिसमें अमृत नाम ते सुने बखाने जेतड़े, इस सच नाम नु जिन्ने सुनते ने, सच नाम नु जिन्ने बयान करते ने, सच नाम की जो व्याख्या करते ने, सच नाम का जो कीर्तन करते ने, जेड़े सच्चे नाम नु सुनते ने, उन्हां तों मैं सदके कुरबान बलिहार। ए तक लिखा ही नहीं ना भी जरा फलाने सन जाके दुनिया को प्रभुता लैण वास्ते लंगर ला दे मैं उस सदके, ए तक लिखा ना भी अच्छा घर मैं नहीं लगने जेड़ा गुरुद्वारे नहीं आया तो कुरबान सदके ओदे पैरां दीआं जुत्तियां बाबे नानक दे तन दा चमड़ा जेड़ा मैन वेखण गया तो गुरुद्वारे नहीं आया। तू अपने अंदर चाची से मार लिया कर भी तू गुरु का सिख है, गुरु का सिख तेनू ओदे नाल एक मोई होई जनानी दी तस्वीर लगे जिंदा जागदा, गुरु ग्रंथ साहब ना चंगा लगे मुझा नू ताद है मैं गुरु गोबिंद सिंह का सिख हां, ते रोक लै तेनू गुरुद्वारे मैन दावा तेरा सिखी दा होए, जे सिखी दा दावा करना ते फिर ऐदा करना पैना, वो माए अपनी सी है जिससे बिनती है माखमूर रहते हैं, ख्याले चश्मे साकी के नशे में चूर रहते हैं, हमारा दौरे मैं हर हर नफस के साथ चलता है, इसलिए हर घड़ी हर लहजा हम मासरूर रहते। बाबर ने साथी छड़ दे हुक्म देता चले जाओ यमुनाबाद, लेकिन इमनाबादिया ने इमनाबाद सरदा वेख्या सी, कटे वटे हुए लोग वेखे सन, उत्ते भौंकदे इलां बोटियां लैके उड़दियां, उन्होंने सारा नजारा अखां नाल वेख्या सी, मन मन पहाड़ियां लत्तां हो गईयां, इमनाबाद वाल तुरन नू जी ना करे, रेड क्रास ते अज बनी है। बाबा नानक कहण लगा मरदानिया इन्हां दे खाने खराब हो गए, इन्हां दे घर चुगे फुके गए, इन्हां ने अपने बच्चे घोड़ियां दे पैरां हेठा मसलदे वेखे, मावां ने अपने पुत्रां दीआं बूटियां घोड़ियां दे पैरां हेठा रुलदियां वेखियां, मरदानिया इन्हां कोलों इमनाबाद नहीं जाया जाणा, इन्हां दा आगू बण, इन्हां दे अगे लग, दोवें साथी अगे होके तुर पए, सफर मुकदा गया चार मील दा फंद, अद्धा कमील रह गया, ते फिर इमना पादियां ने धुए निकलते वेखे इमनाबाद दे कां इला चीला, इमनाबाद दे बाजारा विचों बोटियां लै लैके दरख्तां उत्ते बह के मास खांदियां वेखियां, उत्ते हड्डियां धूंदे जांदे वेखे, गिद्दड़ छौणियां पाईयां होईयां वेखियां, ते इमनाबादियां दीआं चीखां निकल गईयां, इमनाबादियां दी अखां के हनेरा आ गया, इमनाबादियां नू चार चफेरे निराशा ही निराशा दिसी, इस वेले चीहां निकलियां कुबां निकलियां, नेत्रां ने मोती बरसाए, ये गरीब नू आज सहर सच्चे पातशाह ये बेबे नानकी दे वीरा, ये माता तृप्ता दे सरदन अर्ध मंदिर, ये मैता कालू चंद दे दिल दी आस उम्मीद, ये सारी दुनिया का दर्द अपने दिल के खाने विच रखन वाले माई, मेरे को नजारा चलिया ना गया, मरदानिया कह दे छेती नाल रबाब कट कार अगली बाणी, इन्हां सर्दियां नूं ठंड पै, इन्हां कम हौसलिया का हौसला बचे, इमनाबादी चार चफेरे बह गए, सरकार दरम्यान विच बह गए, मरदाने रबाब बजाया, जिसल अपने प्यारे प्रीतम नाल एक मिक हो गए, ते फिर हजूर की जुबाने पाक विचों ए अखर निकले सी, जिन सिर सोहन पट्टियां, अपने मालक नाल गली पै गए मेरे वाहिगुरु,
ਮੇਰੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਕੱਲ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪੱਟੀਆਂ ਮਾਂਗੀ ਪਾਏ ਸੰਧੂਰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਿਚ ਸੰਧੂਰ ਭਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਮਾਲਕ ਜਿਉਂਦਾ ਪਤੀ ਜਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਯਾਤ ਹੈ ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪੱਟੀਆਂ ਮਾਂਗੀ ਪਾਏ ਸੰਧੂਰ ਸੋ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਕੇਸ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕੈਂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੈਂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪੱਟੀਆਂ ਮਾਂਗੀ ਪਾਏ ਸੰਧੂਰ ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਾਬਰ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਧੂੜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਕੱਲ ਮਹੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਸਨ ਇਹ ਕੱਲ ਮਹੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਲਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਧੋ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਦਰਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹੂਕ ਨਿਕਲੀ

महाराज तुसा पहला मंगता कहता हूं मंगत्या का मंगता तुसी मुगल सम्राट की तौहीन कर रहे हो। सलीके नाल बोलो कुछ मंगो। हजूर ने कहा मैं मंगते कोलो मंगत्या दे मंगते कोलो और बेसबर मंगते कोलो कदे कुछ नहीं। बाबर ने करवट बदली पातशाह तुसा तीन फतवे ला तीन मंगता मंगत्या दा मंगता बेसबर मंगता मैं किवें मंगता हां मैं किवें मंगत्या दा मंगता मैं किवें बेसबर मंगता दस सकदे हो। साहबा ने जवाब दिता सी बाबरा ये जवाब मेरे कोलो ना पूछ। रात नूं लिबास बदल के सीधे साडे कपड़े पा के इमनाबाद दियां बाजारां च फिरी इमनाबाद दियां गलियां च फिरी किसे कोठे दी बारी नाल कन ला के सुनी जिस मां दा पुत तेरे आदमियां ने डकरे कर दिते ओदे सामने उस मां दे बैन उस मां दे कीरने उस मां दे हावे उस मां दे हौके उस बारी दियां चीथां विचों सुनी जिस सुंदरी का सुहाग लुटिया गया उसके वैन सुनी जिस बाप की जिंदगी का सहारा तू मलिया मेट कर दिता उसके हाले से होके सुनी इन्नी कतलो गारत करके बलिश्त बलिश्त जमीन खून आलूदा करके कहर बरपा करके कियामत ले आके रोटियां ओ दो कणक दियां मिलदियां ने जिहड़ियां तैनू खंडार विच मिलदियां सन सब्जी ओ ही मिलती है जिहड़ी जमीन च उगदी है। हुण तू कोई सोने की सब्जी नहीं खांदा हुण तू कोई चांदी की चटनी नहीं खांदा हुण तू कोई हीरियां की रोटी नहीं खांदा पर दो रोटियां दिया गुलाम दो रोटियां दिया मंगतिया दो रोटियां वास्ते दर दर अलख जगाउण वालिया दो रोटियां बदले इन्नी कतलो गारत करके गिठ गिठ जमीन खून नाल रंग देण वालिया तैनू मंगता मैं आखां ते की आखां तेनू मंगत्या का मंगता ना आखा ते की आखा तेनू बेसबर मंगता ना आखा ते की आखा। ये बाबा नानक है जेड़ा किसी नू कह सकदा राजे सी मुकदम कुत्ते। कोई दुनिया का ऐसा बंदा जमया नहीं जेड़ा सच बोलन लगा बाबे नानक की तरह बिल्कुल परहेज ना करे। ये बाबे नानक नू ही शर्फ हासिल है। गरीब नू अज कहिंदे ने साहिब सच्चे पातशाह ये पाणा वरत गया खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न देई करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पई कुरलाने तैकी दर्द न आया। मालका चीखा निकल गई इमनाबादियां दिया हर एक दे अंदर वसण वाले तेनू ना सेक लगा तेनू ना पीड़ होई तेनू ना दर्द आया। ये आवाजा सन जिन्हें बाबर दियां अंदर दियां अखां खोलियां बाबर नू इसके इलाही ला दिता बाबर नू हस्ती मुकदस का मुतलाशी बना दिता अंदर दे नेत्र खोल दिते बाहर दियां अखां ते खुलणियां सी वो मलक भागो दियां खोल के विखाल दितियां बाहर दे नेत्र भूमि चोर दे खोल के विखाल दिते बाहर दे नेत्र सज्जन ठग दे खोल के विखा दिते बाहरले नेत्र कौडे राक्ष दे खोल के विखा दिते अंदरले नेत्र राय बुलार और बाबर वर्गियां दे खोल के विखा दिते। ये धन साहब श्री नानक निरंकारी महाराज जिहड़ा सानू होका दे के कह रहा बिन जे बाका को बखता बिन सरवणा का को सुनता बिन नेत्रा

गुरु की परम सत्कार योग साजी नवा जी गुरु का रूप स्वरूप साध संगत जी गुरु के खास रूप खालसा साहेब जो जो गुरुमुख प्यारे गुरसिख माई भाई वृद्ध बालक गुरु साहेब सच्चे पातशाह जी दे पावन दरबार विच हाजिर होए हो वो सारे दे सारे मनुख जन्म दे भले वास्ते एक बार